0: नरसी भई मार्ग मिड़ी नरिद्वारा विधुवा बचे तीरा मारुझी बेचारी
1: बस्ती खाऊ भटना गयो ठुलो लड़ाई भयो दुबैयुक्त शुक्र बितामा कोई नदीमा पर्यो कोई ब्राह्मण कोई सर्प परदा जुआ देखा नाम के माथि भइकन सरल तहाँ गए खेलिरहेका थिए
0: घर हो प्रहाल घर हो दाहकी छोरी यही वर्ष महापति मरी गए मेरो विपद के कहूँ चलती मथी विवाह गरी दिए बुढा कुरुती कना यही वर्ष

0: गोपिनी काली निका किना छैन सारी छैन गोरी छैन लाने को शत्रुबाहु नारायण कदम का रुखाऊ माथि चढेर
1: हरि हरि
2: यो मुरली।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: सांदाई के बन में नाचने छन मजूरा।
1: वन में जादा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तु को प्रयोग न गरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात न जलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
3: होइन हौ उदय, तपाईँ यो हिरोइन वर्षा राउत भन्ने बित्तिकै के साह्रो एको रह।
4: जब म तेरो भाउजू वर्षा राउतलाई सम्झिन्छु नि, म आफूलाई राज कपूर उसलाई नर्गिस, आफूलाई देव आनन्द उसलाई आशा परे, आफूलाई राजेश खन्ना उसलाई ममता देख्न थाल्छु।

0: अनि देउ त मानेनन् के हो फगाउनु पर्छ के हो
1: मन्त्र आन्नु पर्छ होला
2: मैले यता

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहर्दा नारीले प्रगति पथ को।

आनन्दकन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम सित बोलिए श्री आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।